0: 89.5 FM.
1: Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales.
0: Croc Radio.
2: करे महाराज मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी।